है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के गोले

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420. My name is Anthony Gonsalves.
1: Really?
0: Right, right.

वाली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया

0: रेडियो नगर 90.4 FM आवाज सुनता।
1: तुम्ही ऐकताय सांज रंग हा कार्यक्रम आरजे कोमल सोबत।

भवोगगामि महाभवोहम। भव मैं कुछ होना चाहता हूं, भव कहते हैं कुछ होने की कामना। अरे होने की कामना का एक निरंतर प्रवाह चलते रहता अंदर में, इतने प्रवाह चलते अंदर में, इतने प्रवाह चलते, इतने प्रवाह चलते हैं कि आत्मा की अनंत शक्ति एक एक प्रवाह में बट करके गरीब हो गई। अरबों की संपत्ति हो और अरबों में बांट दी जाए तो कोई भी व्यक्ति अरबपति नहीं हो सकता है। करोड़ों की संपत्ति हो और करोड़ों में बांट दी जाए तो सब रोड़पति है, एक भी करोड़पति नहीं है। वैसे हमारे चलने वाले विचार, अंदर में चलने वाले विकल्प, इन विकल्पों में हमारी श्रद्धा, हमारा ज्ञान, हमारी शक्ति बढ़ती चली जा रही, बिखरती चली जा रही है। और इतनी बिखर गई, इतनी बिखर गई, इतनी बिखर

ये अशुभ की चलती है। कभी निगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। पॉजिटिव में चलते गए तो ऊपर उड़ गए, निगेटिव में चलते गए तो नीचे गिर गए। ये चक्र चलते ही रहता है, निरंतर चलते रहता है। ये चक्र से बाहर हो गए परमात्मा है, और जैसे बाहर हो गए तिर गए, तिर गए, उत्तीर्ण हो गए। और जैसे उत्तीर्ण हो गए तो अनंत चक्षु हो गए, जो जत सपने तीर्थंकर महावीर ने साधना काल में शिल्पानी यक्ष के मंदिर में देखे, उसमें का एक सपना कि परमात्मा समुद्र तीर करके जा रहे, और उसका उत्पल निमित्तज्ञ ने ये परिणाम बताया कि आप मोह का सागर तीर करके जाओगे। ये मोह का सागर है, और जब तक मोह का सागर है तब तक भय है। मोह का सागर परा हो गया कि भय समाप्त हो गए। अभयंकर वीर अनंत चक्षु, कैसे किया परमात्मा ने, इसको कहां से शुरुआत करी? मोह को दूर करने के लिए, समुद्र को तीरने के लिए शुरुआत कहां से करें?

कुछ भी संग्रह नहीं किया, कलेक्शन नहीं किया, स्टोर नहीं किया, जो आया उसको जाने दिया, पकड़ा नहीं। जो आता है उसको जाने दिया, पकड़ा नहीं। विचार आते गए, जाने दिए, उनको पकड़े नहीं। विचार का आना खतरनाक नहीं है, विचार को पकड़ना खतरनाक है। विकल्प आना खतरनाक नहीं है, पर विकल्प को पकड़ के रखना खतरनाक है। डाउट मन में आना खतरनाक नहीं, लेकिन डाउट को परस्यू करना खतरनाक है। परमात्मा ने उसका संग्रह नहीं किया, न सन्निहीन को वही आसुपन नहीं। और शब्द दिया सुधर्मा स्वामी ने कि जिनकी प्रज्ञा अश्व के समान तेज गति वाली होती है, जिनकी प्रज्ञा आसुपन ने, अश्व प्रज्ञा, अश्व प्रज्ञा बना शब्द अश्व से बना है, जो बहुत तेज दौड़ता है, जो दौड़ता है और जिसकी प्रज्ञा बहुत तेजी से दौड़ती, एकदम तीव्र गामी जिसकी प्रज्ञा होती है, वो संग्रह नहीं करता है। जिसकी मंद प्रज्ञा होती है वो संग्रह करता है, और वो जैसे जैसे संग्रह करते चले जाता है वैसे वैसे समुद्र में तूफान आते जाते हैं। जैसे जैसे समुद्र में तूफान आते हैं वैसे वैसा डर लगते रहता है, भाई एक तूफान गया, दूसरा तूफान आया, दूसरा तूफान गया, तीसरा तूफान आया, वो तूफान के कारण से डर लगते ही रहता है। मालूम नहीं, अब ये नहीं यो बोलियो, बाद में कहीं बोली ला मालूम नहीं। और जब भी वो कुछ बोलता है, जब भी वो कुछ बोलता है तो हम केवल उतना ही नहीं सुनते, उसने पहले जो बोला था कि अंदर में वो पड़ा हुआ है, अंदर में वो स्टोर है। तो अंदर का स्टोर नहीं हो तो जो बोल रहा है उसका असर नहीं होगा, लेकिन अंदर में बहुत स्टोर पड़ा हुआ है, तो जो भी आता है वो पुराने में और बढ़ोतरी करते चला, बढ़ोतरी करते चला था, बढ़ोतरी करते चला। इसको कहते संसार बढ़ते जा रहा है, संसार बढ़ते जा रहा। और जैसे जैसे संसार बढ़ते जाता है वैसे वैसे ज्ञान कम होते जाता है, इधर ये बढ़ता है उधर वो कम होता है। वर्धमान संसार और वर्धमान ज्ञान, ज्ञान को वर्धमान करना होगा तो संसार को हीयमान करना पड़ेगा। दो शब्द जाते हैं, तीर्थंकर परमात्मा के पास कोई सयाना जीव पहुंचता तो पहला सवाल पूछता है वो, मैं शुक्ल पक्षी हूं कि मैं कृष्ण पक्षी हूं। शुक्ल पक्षी

समझते हो ना कि मेरा उजाला बढ़ता जाने वाला है, तो शुक्ल पक्ष में हो, कृष्ण पक्ष कभी नहीं गई, मेरा उजाला घटते जाने वाला है। एक बार चेक करो वाला, बचपन में जितने हम निर्मल थे वो निर्मलता अपनी बढ़ती चले गई या घटती चले गई? धन्यवाद आपको, है ना। जितना विनय शुरुआत में था वो विनय बढ़ता गया कि कम होता गया, प्रेम बढ़ता गया कि कम होता गया, श्रद्धा बढ़ती गई कि कम होती गई। जैसे जैसे हम किसी के परिचय में आते हैं, उस परिचय में आने के पहले पल में उसके प्रति जो आदर होता है, उसके प्रति जो प्रेम होता है, उसके प्रति जो एक अनुराग होता है, वो बढ़ता है या परिचय के बाद घटता है? बस सोचो, बोलो कहीं मत, सबको मालूम है ना। और वो प्रेम बढ़ता चला जाए तो शुक्ल पक्षी है, वो सहयोग की भावना बढ़ती चली जाए तो शुक्ल पक्षी है, और वो सहयोग की भावना कम होती चली जाए तो कृष्ण पक्षी है। कन्न पक्षिया सुख पक्षिया, मेरा वर्तमान क्या है ये लोग पूछते हैं, लेकिन सयाने आदमी जब तीर्थंकर के पास आते हैं तो पूछते हैं भवी अभवी, मैं भव्य क्या भव्य हूं, फिर पूछते हैं मैं कृष्ण पक्षी हूं कि शुक्ल पक्षी हूं। हो सकता है कि इसमें मेरे पास अरबों का धन हो, लेकिन किन्न पक्षिया हो, अरबों का धन जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है कि आज मेरे पास कौड़ी का धन है, लेकिन शुक्ल पक्षीय हूं तो कौड़ी को अरबों होते देर नहीं लगेगा, देर नहीं लगेगी। अर्जुन माली ने जब दीक्षा ली उसके पास कितना ज्ञान था, क्या था उसके पास, न संस्कार थे न ज्ञान था, लेकिन शुक्ल पक्षीय था। तो शुक्ल पक्षीय था तो बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। गोशालक के पास तो बहुत ज्ञान था, परमात्मा के पास आया तब भी भक्ति से आया था शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे परमात्मा के साथ रहते गए वैसे वैसे भक्ति कम होते गई। कन्या पक्की आए, एक सवाल पूछिए स्वयं को कि शुक्ल पक्ष बनने का पुरुषार्थ मैं करना चाहता हूं क्या? ये पुरुषार्थ कर सकते हैं, बोध पूर्वक पुरुषार्थ कर सकते हैं। कैसे मेरे अंदर के सहयोग की भावना बढ़ती चले जाए और संघर्ष की भावना कम से कम होती चली जाए? कैसे कैसे मेरा संयम बढ़ता चला जाए और असंयम कम होता चला जाए? एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, किसको बढ़ाना? ऐसा पुराने बुजुर्ग कहते थे, गुरुदेव भी फरमाते थे, भूख बढ़ने से बढ़ती है, नींद बढ़ाने से बढ़ती है, और भूख घटाने से घटती है, नींद घटाने से घटती है, गुस्सा घटाने से बढ़ाने से, दुश्मनी घटाने से घटती है, और दुश्मनी बढ़ाने से बढ़ती है। मैं क्या बढ़ा रहा हूं और मैं क्या घटा रहा हूं, इससे तय होगा मैं आज कहां हूं। डोंट वरी, मैं कौन से पार्टी में हूं, पक्ष ने पार्टी, मैं उजाले के पार्टी में हूं कि मैं अंधेरे के पार्टी में हूं, उजाले की पार्टी में हूं तो न सनीम को वही आंसुपन नहीं, तरियो समुदम च महाभवोगम। फिर वो संसार कितना ही बड़ा होगा तो तिर जाएंगे, तिर जाएंगे। अभय कुमार की कहानी में, ऐसे बहुत सारे प्रज्ञाशील व्यक्तियों की कहानी में यूनिवर्सली ऐसे प्रसंग जाते हैं कि उनके सामने पहेली आती है,
एक पहेली आती है कि समुद्र को तोलो, समुद्र का पानी नापो, आप और हम हाथ टेक देते हैं कि समुद्र का पानी कैसे नापा जाता है। लेकिन अभय कुमार जैसे व्यक्ति एक बात रखते हैं, बोले इस समय का पानी नापता हूं लेकिन आने वाला पानी रोक दो, पहले आने वाला पानी रोक दो तो समुद्र का पानी नाप लूंगा, बोले। हेलो, कितना ही समुद्र में पानी हो, आने का रास्ता बंद हो जाए तो समुद्र के पानी को समाप्त करना आसान है, लेकिन आने का नहीं रोका तो मुश्किल है। ये आने का रोकना, इसको कहते आश्रो को रोकना। किसको रोकना? आश्रो को रोकना, आमंत्रण नहीं देना उसको, आजा आजा आजा, नहीं, आने के रास्ते बंद कर देना। आने के रास्ते बंद कर देना मतलब क्या है? संग्रह नहीं करना। क्या नहीं करना? किसका नहीं करना? वस्तु का, कपड़े का, कि विचारों का, विकल्पों का, घटनाओं का, उसका संग्रह नहीं करना। वस्तु का संग्रह तो पशु नहीं करते हैं, वस्तु का संग्रह एकेंद्रीय नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास भी जन्म जन्मांतर के जो उनके भाव है उसको उन्होंने संग्रह करके रखा हुआ है। सभी आयुष्य पूर्ण कर करके मनुष्य भव से दूसरे भव में हम जितने भी यहां बैठे हैं वो जाने वाले हैं। जाते समय यहां का संग्रह यहां छोड़ के जाओगे कि साथ में लेकर के जाओगे? हाँ, नहीं छूटता है, नहीं छूटता है संग्रह, नहीं छूटता है। वस्तु छूट जाती है, संग्रह नहीं छूटता है। संग्रह किनका छूटता है? जो भाव पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, बोध पूर्वक जो संलेखना लेते हैं, जो समाधि की शरण में जाते हैं, उनका यहां का संग्रह छूट जाता है। नए जन्म में बिल्कुल न्यू पोथी, यहां का संग्रह साथ में लेकर गए कि वहीं से शुरुआत होती वापस, और बढ़ता चला जाए, और बढ़ता चला जाए। बड़ा फेमस आपके यहां उदाहरण है कि छह खंड के अधिपति चक्रवर्ती, कितना भोग, कितना वो भोग, कितना ऐश्वर्य, कितना विलास, कितनी रानियां, कितना परिग्रह, महाआरंभ महापरिग्रह। उसके सामने तुम्हारा परिग्रह तो कोई मायने ही नहीं रखता है। उनके पास जो परिग्रह है, उनके पास जो विलास है, वो तुम्हारे पास तो, मेरे पास तो नाम का नहीं। लेकिन दो प्रकार के चक्रवर्ती होते हैं, एक छोड़ के जाते हैं, एक छोड़ के जाते हैं, एक पकड़ के जाते हैं, छोड़ते ही नहीं। जिन्होंने छोड़ा वे मोक्ष में गए, जिन्होंने पकड़ा वो नरक में गए। बहु घर में आ गई, दो घर में आ गई, अब उसको उत्तराधिकारी मरने के बाद बनाना कि जिंदा रहते हुए बनाना? बना दो, स्वर्ग में जाओगे। आज नहीं कल कब जाओ, उसका होना ही है। हेलो, होना ही है। तो मरने के बाद बनेगा तो कोई मतलब नहीं, आज दोगे तो दाता बनोगे, वो धन्यवाद देगा। मेरे पास कोई भी आता है, मासा वो कपड़ा, वो वस्तु, ये वो, मैंने कहा उधर अपने पास कंगाल, अपने पास कुछ नहीं, छोड़ दो पहले। न सन्निहिम को वही आसुपन नहीं, न सन्निहिम को वही आसुपन नहीं।
यदि समझदार है और तुम्हारी प्रज्ञा बुद्धिशाली है, तीव्रगामी है, तो छोड़ते चले जाओ, संग्रह मत करो। जितना संग्रह करोगे उतने डूबोगे। पुढ़ू उमय धुनी विगएगी, कैसे छोड़े, छूटता नहीं है, कैसे छोड़े। तो सुधर्मा स्वामी ने कहा कि परमात्मा ने कैसे छोड़ा, कैसे महसूस कर रहे हो, कैसे छोड़ा उन्होंने। अब पुढ़ू में के दो अर्थ निकलते, एक तो उन्होंने उसको अपने आप से अलग देखा, क्या देखा, पुढ़ू पृथक धुन ही विगएगी, उसको ढूंढ डाला, किसको, वृद्धि को, आसक्ति को, पकड़ को। वो चील पंछी होता ना, चील पंछी, उसको गिद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, गिद्ध कहते हैं। थोड़ा सा सावधान हो जाए जो, शांत हो, थोड़ा सावधान हो जाए जो, एक बार देख लेना चाहिए अपना मन, हंस जैसा है कि चील जैसा है ना। दोनों आसमान में उड़ते हैं, हंस की नजर रहती पानी पर और चिल की नजर रहती मुर्दे पर, जहां मुर्दा देखा चपाट नीचे। अपना मन कैसा है, अपना मन कैसा है, चिल जैसा है कि हंस जैसा है। हंस नीचे उतरता भी है तो मोती चुनने के लिए उतरता है, और चील नीचे उतरता भी है तो मांस मरा हुआ। पुढ़ू में धुने विगएगी, अंदर का ये जो चील है, अंदर का ये जो चील पक्षी है, जो गिधाड़ है, गिधाड़, इस गिधाड़ को, उसको वृद्धि को गिधाड़ कहते हैं, इसको उन्होंने अपने से अलग कर लिया, अलग कर लिया। मैं बहुत बार इसको भी कहता हूं, कई बार विचार करता भी हूं, बोलता भी हूं, है ना। कई लेने जावला साथे, खाली हाथ तो जाए ना, लेकिन खाली दिमाग नहीं जाए ना, हाथ तो खाली रही ना, हाथ तो खाली है लेकिन दिमाग भरा हुआ है, अधिकार से भरा हुआ है, भावना से भरा हुआ है। अरे मारो इतो छोड़ने जा रही हूं मैं, वो मारो नहीं छूट रही है, वस्तु छूट रही है। न सन्निहिम को वही आंसू पन्ने, पुढ़ो वो में धुने विगएगी, न साम अहम नो अहम प्रति से इच्छे वो तावो इन ए जरागम, न साम अहम नो अहम प्रति से। वो मेरा दुश्मन नहीं, मैं उसका दुश्मन नहीं, मैं दूसरी बात बोल रहा हूं, वो मेरा दुश्मन नहीं, मैं उसका दुश्मन नहीं। हमेशा अर्थ ये करते हैं कि वो मेरा नहीं, मैं उसका नहीं। थोड़ा दूसरा अर्थ दो आज, क्या, कि वो मेरा दुश्मन नहीं, मैं उसका दुश्मन नहीं। मन किस हुईला, हल्को हुईला नहीं हुईला, हेलो ओके हो जाएगा ना, मस्त धोखा लेता रहे वाला बच्चे, है ना। नशा महम नो यहम प्यति से, अपने पास देखो बोला किसका संग्रह ज्यादा है, भगवान का संग्रह ज्यादा है कि दुश्मनों का संग्रह ज्यादा है। वो तो भूले इसको नहीं, हाँ अगला जन्म में भी छूटे को नहीं, पहुंच जाते आ जाते, क्योंकि वो पकड़ के रखा हुआ है। ये बंध तत्व चल रहा है ना, ये विरुद्ध किस में चल रहे हैं, अपने बंध तत्व में चल रहे हैं, बंध तत्व में चल रहे हैं, और बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। बंधनों में देखते हैं कौन सो बंधन सुख रहे, कौन सो बंधन दुख रहे। अरे बंधन दुख रोज है, आप लोग कैसे बताओ, क्या
हम जेल से बाहर नहीं आना चाहते, जेल में लग्जरी चाहते हैं। हेलो कहीं, हाँ बराबर है ना, वे मैंने बराबर उसका यार हुए, वो डॉक्टर्स को नहीं गई है ना, जेल में सुख चाहते हैं, मर सब घर में सुख शांति हो जाए, कठे हथौड़ी घर में सुख शांति हो जाए, अब जेल में सुख शांति हो जाए, जेल से बाहर नहीं आने लगे, जेल में सुख चाहिए, जेल दुखदाई लगती ही नहीं है। जिस दिन जेल दुखदाई लगेगी ना, पंछी को तुम पिंजरे में कितना ही सुरक्षा दो, कितना ही चुगा दो, पंछी की नजर तो आसमान की तरफ ही रहेगी। जानवर होते ना, जानवर जो पालतू जानवर होते हैं, कैसे पालतू जानवर होते हैं, उनको खुला छोड़ दो तुम, शाम को वापस गोठे में आ जाते हैं। किसी पंछी को तुम आसमान में उड़ा दो, वापस बाकी थेथा को विचार कर जो, है ना, थेथा को विचार कर जो, वो उड़ गया सो उड़ गया, है ना। नसनहीन को वही आंसूपन ने पुढ़ो में धुने भी गए गई, तरियुम समुदम च महाभवगम अभयं करे वीर अनंत चक्षु। गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ की कहानी चलती है। गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ को कहीं पर कोई विधि से उन्होंने एक सोने का, सोने के वीट बना ली, सोने के ब्रिक्स बना ली, और उसको झोले में ढकेल कर चलने लगे। अब एक जंगल से जा रहे थे, जंगल से जा रहे थे तो बार बार चेले को पूछे, अरे जंगल में कोई डर तो नहीं, अरे जंगल में कोई डर तो नहीं, कोई चोर तो नहीं, कोई डाकू तो नहीं। वो चेला परेशान हो गए, मच्छर में परेशान, बोले ये क्या मामला है, राजे आज के चल रहा है। तो चलते चलते एक जगह पर गुरु जी को थोड़ी शारीरिक लघु शंका आई, तो गुरु जी ने झोली चेले के पास दी। अब जो थोड़ी थोड़ी भारी लगी, गुरु जी लघु शंका करने गए, चेले ने देखा, अरे यार ये तो भाई साथ में चल रहा है। उसने वो सोने के ईंट ली, फेंक दी और उतने वजन का दूसरा पत्थर अंदर रख लिया। गुरु जी ने आते ही झोली वापस मांग ली, दे दी। थोड़े से आगे चले, गुरु जी ने फिर पूछा, अरे जंगल में कोई डर तो नहीं, बोले डर पीछे फेंक दिया, बोले डर पीछे फेंक दिया, बोले क्या मतलब, बोले डर फेंक दिया नीचे। गुरु जी ने देखा अंदर सोना, अंदर क्या है, और फिर गुरु जी मस्ती से हंसे, क्या मस्ती से हंसे, डर क्यों लगता है। कुछ तो भी जाएगा, कुछ तो भी जाएगा। हम लोग पेड़ के नीचे सो जाते हैं, डर नहीं लगता है, तो दरवाजे खुले रखने नहीं सो सको। रोज कोई चोर आवे को नहीं, लेकिन कभी आईला भरोसो, वाह कई बात है, कभी मौत आईला उरो भरोसा है, कभी चोर आईला उरो भरोसा को नहीं। नसनहीन कोई आस बने, तरियो समुदम च महाभोगम अभयंकर वे अनंत चक्षु। ये सारा संग्रह छुट गया तो भय चला गया, भय चला गया, आराम से चला गया। इसलिए प्लीज मेहरबानी कर जो महारा माते, महारा माते मेहरबानी कर जो, मैं के बोलू थोड़ा मोकड़ा मन से, खुला मन से, तो अटने उठने मत ले जा जाओ उन्हें, ले जाओ मैंने अटने उठने। जैसे मैं जो एक नियम बता रहा हूं आपको, है ना, साधु को ताले का कोई काम नहीं, साधु को खुलना पड़ा है सारा सामान, कभी भी जाओ, अलमारी खुली है, रूम खुला है, सब खुला है, कोई गया तो गया, अपना क्या है, किसका है,
गया तो गया, रहा तो रहा, चला गया तो चला गया, टंटोरी अटेंशन लेता ही नहीं हूं। अब तुम बिना चाबी के रह सकते हो क्या? हेलो, क्यों डरे है ना? संग्रह है, परिग्रह है तो ताला लगेगा ही लगेगा, और ताला लगेगा तो चाबी। अब वो चाबी लेने घूमो थे कि अलमारी लेने घूमो? चाबी लेकर घूमते हो कि अलमारी लेकर घूमते? वह चाबी में से अलमारी छिपा रही, वह दिख नहीं रही। अलमारी किसमें छिपी हुई? चाबी में छिपी हुई है ना? वो थाने दिखे कोई? जितनी भी अठे सेठानियां बैठी है ना, है ना, चाबी साथ रहने आए, समय कर रहा है, मजेदार बात नहीं लाया वो, नहीं लाया, बिल्कुल घरे रखने, कठिन कड़े छिपाई ना आया है ना। चलो सच सच बताओ, कभी आपका जूता चला गया आपके जाने के पहले? वो चला गया, कौन कौन खुश हुए? क्यों? अरे आपसे आधी किसी को जरूरत थी, वो लेकर गया, आपने दिया नहीं, वो लेकर गया। मैंने एक श्रावक देखा बंधु, और उस श्रावक को मैं निरंतर मेरे अंतर्मुख में, अंतर हृदय में संभाल करके रखा है, सोनीपत दिल्ली के पास हम गए थे वहां पर। संगपति 90 साल का, क्या उम्र? अब हम थोड़े से, मैंने कहा वो 90 साल का संगपति बनाए रखे हो क्या काम करेगा? तो लोगों ने मारा सब बोलना मत, वो तो कभी का छोड़ना चाहते, हम उनको छोड़ते नहीं, हम उनको छोड़ते नहीं। बोले क्या बात करते हो? बोले मार साहब बता रहा हूं आपको, लोगों ने जो बताया, करोड़पति है, किसी अलमारी को ताला नहीं है, किसी अलमारी को ताला नहीं, किसी ने कुछ पैसे उनको लेकर गया तो वापस मांगता ही नहीं है, लाके दिए रख लेता है, मांगने जाता नहीं है। कोई कोई वस्तु उठा करके लेने लग गया तो उधर देखता ही नहीं है। मैंने कहा हाउ इज दिस पॉसिबल? लगा नहीं, घर पर गया देखने को, लोगों देखा तो सच में कुछ भी नहीं, और आदमी बैठा है मस्ती से। मैंने कहा क्या सोच है भाई तेरा ये? बोले ले जा रहा है तो पिछले जन्म का मेरे पर कोई कर्जा होगा जो ले जा रहा है। मैंने कहा क्या गारंटी? बोले नहीं तो अगले जन्म के लिए मेरा कर्जा ले जा रहा है, अगले जन्म में चुकाएगा। कमाल हो गई अरे बात, सिद्धांत के रूप में कहना अलग बात है, प्रैक्टिकली इसको एक गृहस्थ ने जीना, एक गृहस्थ ने, गृहस्थ जीवन में रहते हुए जीना। कौन कहता है कि इस समय में ऐसे जीव नहीं होते? मैं मिला हुआ हूं उनको, मैं कथा नहीं सुना रहा हूं, जिनको मिला उनको सुना रहा हूं। ये लोग होते न सन्नीम को वही आसोपन्ने, सारी गिधाड़ अंदर का जो चील है ना उसको अलग कर दिया,
और जैसे जैसे से ये चील अलग होता है वैसे वैसे हंस को उड़ने के लिए आसमान मिलता है, और फिर

0: अनंत, और ये भय चला गया कि अनंत चक्षु हो जाते, सारे डायमेंशन ओपन हो जाते, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन ओपन होते चले जाते। और जितने डायमेंशन आपके ओपन होंगे उतने आप ओपन माइंड हो जाओगे। देव गुरु की कृपा है, देव गुरु की कृपा है, गुरुदेव की तो पक्की है, तीर्थंकर परमात्मा के भी 24 घंटे हैं, मेरे पर भी हैं, तुम्हारे पर भी। हेलो, किस पर? सब पर है। अंतर केवल इतना ही है कि आप महसूस नहीं करते, मैं महसूस करता हूं। क्या? अरे जीवन रियलिटी से नहीं चलता है, मेंटालिटी से चलता है। जीवन रियलिटी से चलता किसे चलता है? मेंटेलिटी से। यदि मेंटेलिटी में तुम्हारे परमात्मा है तो तुम्हारे जीवन में परमात्मा है, तुम्हारी मेंटेलिटी में परम गुरुदेव है तो तुम्हारे जीवन में गुरुदेव है, तुम्हारी मेंटेलिटी में गुरु और परमात्मा नहीं है तो तुम्हारे जीवन में गुरु और परमात्मा नहीं है। न्यू, हमेशा नया बोलना है? तो अवसर है आपके लिए। विरुद्ध की आराधना चल रही है, मस्ती से चल रही है। कल शाम से समाधि शरण वाले भी आए हैं, और समाधि शरण वालों को रात का डोज देने के बाद पता नहीं रात को नींद आई कि नहीं आई, है ना? डोज एक दिया, मैं और मेरे से आधी व्याधि उपाधि का जन्म होता है। किससे? मैं और मेरे से आधी व्याधि उपाधि का जन्म होता है। मैं और मेरा नहीं तो आधी व्याधि उपाधि नहीं तो समाधि पक्की है। समाधि के शरण में जाना है तो मैं और मेरे को छोड़ना है, मैं और मेरा साथ में है तो समाधि का दरवाजा बंद है। ये दो छूट गए तो जठे उठे समाधि। वे डोज दिया उनको कि अपना नाम लेकर तुमको कोई पुकारे तो नाम मेरा नहीं है। कहीं सबसे ज्यादा मेरा किसको माना हुआ तुमने? मारो नाव, है ना? अब कहीं है क्या रो थारा नाम? कहीं जन्म नाम लेने जन्म्यू कहीं, अगला जन्म में नाम साथे चले लगे, ने मारो नाव खराब कर दिया महाराजाओ ने, अरे थारो नाव खराब कर दिया। हाँ, मैं और मेरा, मैं सुपर हूं आया नहीं, वो छूट गया ना तो समाधि आसान है। समाधि आसान है, समाधि घनी सोपी है। ये मैं और मेरे में रहते हुए समाधि मुश्किल है। और अपने को क्या चाहिए? मैं भी चाहिए, मेरा भी चाहिए और समाधि भी चाहिए। तीनों मिलते नहीं है ना। गुरुदेव कहता था गाल को फुगाना और हंसना दोनों साथ में, नहीं मैं हंसूला बिन गाल भी फुगाऊला। कहो ना, मैं भी चाहिए समाधि भी चाहिए, गाल भी फुगाना हंस भी नहीं चलता ना। उस तीर्थंकर परमात्मा के आराधना में हम तन्मय हैं, तल्लीन हैं, और 20 तारीख से उनके वाणी की आराधना। कौन सी वाणी की? निर्वाण कल्याणक की देशना। कौन सी देशना? निर्वाण कल्याणक की देशना। 24 तीर्थंकरों में केवल एक ही तीर्थंकर के निर्वाण कल्याणक की देशना है। तीर्थंकर महावीर जैसा दूसरा तीर्थंकर नहीं है। बाकी तो छोड़ ही दो, क्योंकि बाकी सारे तीर्थंकर जो है निर्वाण के पहले ही कोई सम्मेलन शिखर पहुंचता, कोई गिरनार पहुंचता, कोई कैलाश पहुंचता, और 1 महीना 15 दिन 8 दिन के लिए मौन, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन। लेकिन तीर्थंकर महावीर जैसे उनको निर्वाण कल्याण की वेला आई कि मस्त आसन लगाया और प्रवचन देना शुरू किया, मौन भी नहीं करी, जंगल में भी नहीं गए, गुफा में भी नहीं गए, पहाड़ी पर भी नहीं गए, एक साथ 48 आवर्स 48 घंटे तक प्रवचन देते ही रहे। और प्रवचन देते देते ही मालूम ही नहीं पड़ा लोगों को कब गए। ऐसा तीर्थंकर मिलना नहीं है। उत्तराध्ययन सूत्र केवल भगवान महावीर के शासन में। इस वाक्य को अच्छी तरह से दिमाग में रख लो, उत्तराध्ययन सूत्र केवल भगवान महावीर के शासन में, आचारांग सभी के शासन में, ठानांग सभी के शासन में, स्वेगणांग सभी के शासन में, ज्ञाता धर्मकथा भगवती उपासन दशांग अंतर दशांग प्रश्न व्याकरण विपाक सूत्र दृष्टिवाद सभी के शासन में। उत्तराध्ययन सूत्र केवल परमात्मा प्रभु महावीर के शासन में। ऐसी वो सर्वोत्तम तीर्थंकर के सर्वोत्तम वाणी उस परमात्मा के पावन वरदानों की आराधना का पल अब नजीक नजीक नजीक आ रहा है। आप उसके नजीक आ रहे हो क्या? वो तो नजीक आ रहा है, आप नजीक आ रहे हो क्या? मैं तो थका नजीक आई हो, लेकिन थे महाराज नजीक आया कि देखना पड़े ना। मैंने आज 3.5 महीना में थे, 2.5-3 महीना लागे को नहीं कहते कि मारा नजीक आया हो, आज डिस्टेंस के कम है और जानने को नहीं मने थन जानवर क्या क्यों नहीं बोलेंगे? उसको पता है डिस्टेंस वैसा का वैसा ही है, डिस्टेंस कम नहीं हुआ। मैंने तो डिस्टेंस कम कर दिया। कई लोगों का तो डिस्टेंस बढ़ गया, कम होना चाहिए था, है ना। मैं तो आया तुम्हारे पास, तुम मेरे पास आए क्या? निर्वाण कल्याण तो पास में आ रहा है, आप निर्वाण कल्याण के पास में आ रहे हो क्या? इंद्र नथिंग नथिंग, किसी को छोड़ूंगा नहीं, नथिंग। देव शर्मा आएगा नहीं तो गंधर्व को भेजा मेरे महावीर ने वापस, इंद्रभूति गौतम को भेजा। ये तुम्हारा सोच हो सकता है कि जो नहीं आया उनको छोड़ दो, नथिंग। ये सोच लेकर के मैं जीता नहीं हूं, ये सोच मेरा है नहीं कि जो नहीं आया उसको छोड़ दो, नथिंग। अरे एक माँ के 4 बच्चे हो, 3 बच्चे घर पर आए हो और चौथा बच्चा घर पर नहीं आया हो, तो माँ क्या 3 बच्चों को संभालेगी कि चौथा बच्चे खोजने जाएगी? खोजने जाएगी, और जब तक वो मिलता नहीं तब तक शांति से समझ ले जो बात। और तुम यदि 3 बच्चे घर में आ गया, चौथा नहीं आया, छोड़ा ना उन्हें, कही उरे अक्कल नहीं, ठिकाना मत, कहने माथा पच्चे करो, तो थे मां को नहीं हो, तुम बाप नहीं हो। मां बाप कभी भी किसी बच्चे को छोड़कर के जी नहीं सकते, ये वात्सल्य का सवाल है, मोह का सवाल नहीं है। इसलिए प्रयास चालू है, कंटिन्यू चालू है। जो गोत्र जुड़े हैं उनका अभिनंदन है, जो गोत्र नहीं जुड़े हैं उनको आमंत्रण है, कंटिन्यू आमंत्रण है। और जिन जो जो लोग जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि जो गोत्र जुड़े नहीं है उनको अपने साथ जोड़ ले। मैंने कल पोखरना को कहा कि तुम्हारे साथ किसी को जोड़ लो, उन्होंने जोड़ लिया। कल किसको जोड़ लिया भाई पोखरना ने? चोपड़ा को जोड़ लिया, सोनी मंडले से और एक जोड़ लिया, पेंडे भैया गुंदेचा परिवार ने सिंगली परिवार को जोड़ने का तय किया, कोठारी परिवार ने, तो उनका बड़ा परिवार है, कर्णावट 23 तारीख, बोरा परिवार, बाबू सेठ, हाँ तुम बोरा किसको जोड़ते साथ में? नहीं नहीं चाहिए, तुम जो जोड़ो, खमके हो तुम, किसको जोड़ते? तुम तय करो नहीं तो मैं तय करता हूं, मैं तय करता हूं, मैं तय करता हूं। तुम लोढ़ा परिवार को जोड़ लो साथ में, बराबर दिया ना? मैं दिल की बात करता हूं, मैं लिख देता हूं बोरा प्लस लोढ़ा। जमून घ्या चांगलं दही घट जमवा, चांगलं जावन द्या म्हणजे दही चांगलं जमन, है ना? बोरा और लोढ़ा परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार साथ में किसको जोड़ता है पता पड़ता है, करो, है ना? आगे है कांकरिया परिवार, 7 अक्टूबर को अपना 26 अक्टूबर को कांकरिया परिवार चेन्नई का है ना, चेन्नई का परिवार है। और मैं आग्रह करूंगा कि वो चेन्नई से वो आएंगे यहाँ पर, लेकिन 26 अक्टूबर के लिए अहिल्या नगर से, गुरुदेव की भूमि से उनके साथ कौन सा परिवार जोड़ता है जो यहां बैठा है उसमें से, जिनका अब तक नंबर नहीं लगा उनसे, क्या नाम? देसड़ा परिवार। ओके, पोखराणा के साथ कौन है? चोपड़ा, चोपड़ा और सोनी मंडले सा, सेलोत। 28 अक्टूबर को संचेति परिवार है, सुरेंद्र जी संचेति फ्रॉम पुणे, है ना? तो उनके साथ यहाँ का संचेति परिवार है, यहां भी संचेति के घर ही है। और संचेति के साथ और कौन जुड़ेगा उनके साथ, जल्दी से नाम मुझे बता देना। गुंदजक्सा सिंह में जोड़ दिया, गुंदजक्सा सिंह में जोड़ दिया। बोगावत के साथ लोढ़ा को जोड़ा था, लेकिन अब लोढ़ा जो है बोरा के साथ जोड़ देता हूं, बोगावत के साथ और किसी खोजते हैं। ललवानी परिवार चेन्नई का है, ललवानी परिवार चेन्नई का है, वो आएंगे, लेकिन यहां से उनके साथ कौन उनके लिए वर्क करेगा वो एक गोत्र मुझे चाहिए। नहीं, चेन्नई का लोढ़ा नहीं आ रहा है, ललवानी आ रहा है। बाबू सेठ क्यों सगड़े रहा सामने ढोल बजावे? बाबू सेठ, बाबू सेठ, बाबू सेठ लोढ़ा, बाबू सेठ भोरा। टेंशन आ गया, कटारिया परिवार। हाँ जी, साथ में किसको जोड़ते हो? बरमेत सब परिवार की आज मीटिंग है, उनके साथ बात कर लूंगा। डूंगरवाल परिवार, धोखा परिवार और तातेड़ परिवार, कासवा परिवार किसको साथ में जोड़ता है जल्दी तय कर ले। कासवा के साथ जो जोड़ना चाहे जोड़ना चाहिए, और जो उनको साथ में जलना चाहे नाम दे दीजिए पटापट। सेठिया परिवार, मुनोद परिवार और नगर का कांकरिया परिवार, चेन्नई के नाहर परिवार के साथ लोकल का नाहर परिवार जुड़ गया है, और जो जुड़ना चाहे चंगड़िया परिवार। हाँ, जुड़े कट ही जुड़ जाने उड़ गए। ये आज के विरुद्ध के लाभार्थी चंगड़िया परिवार और सोनी मंडलेसा परिवार, दोनों ही पुरुषाकार के ट्रेनर परिवार है, दोनों ही पुरुषाकार ट्रेनर परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन। और कल के विरथी के लाभार्थी परिवार, धनराज जी, धीरज जी, मधुर जी, गांधी परिवार, धनराज जी, धीरज जी, मधुर जी, गांधी परिवार जल्दी से आगे आ जाए। संजय जी तातेड़ परिवार और विशाल किशोर जी तातेड़ परिवार चंबोड़ी वाले। वाह भाई, हाँ बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो।
1: राष्ट्र संत आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन, उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन, तीर्थेश ऋषि जी महाराज साहब और सर्व साध्वी गणों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। 18 तारीख की जिनेश्वरी भव्य यात्रा सत्ता कॉलोनी से निकलने जा रही है। सुबह 7 बजे वहां सत्ता कॉलोनी में से सहकार सभागृह से धार्मिक परीक्षा बोर्ड पे आने वाली है। मैं सत्ता कॉलोनी
0: गांधी परिवार
1: वालों के तरफ से सबको विनंती करता हूं कि आप ये जुलूस में जरूर सहभाग हुए और घर से नौकरशी करके मन ना आवे, सत्ता कॉलोनी में नौकरशी रखी हुई है तो आप उसका भी लाभ लेवे। और सब लोगों को मैं आग्रह भरी विनंती करता हूं कि आप 18 तारीख को सुबह 7 बजे सत्ता कॉलोनी में पधारे।
0: चलारी मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम
1: ये सत्ता कॉलोनी में
0: मंगलम चलारी लघुतमारी हंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली पन्नतो धम्म लघुतमा चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवज्जामि चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करणा और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद है।
1: ये जो सत्ता कॉलोनी में 6 जुलूस निकलने वाला है उसके लाभार्थी है राजमल जी चंगेड़िया, मनसुख लाल जी गुंदेजा, विजयू जी गोगड़े और हीरालाल जी पोखरना।
0: आज के ऑनलाइन पचकान पांचों पास हो गए। संगीता जी फिरोदिया बिस्त बाग नाला नाका आज पांचों पास से हो गए। सूर्य बारह मतम बचकर तिवियम प्यार सहसनम खैमम सैमम सहसागारे नम अंतागारे नम सब समय वत्यागारे नम ओसरे ओसरे ओसरे। 17 तारीख से आयम बिल की होली शुरू होने जा रही है। 17 तारीख से आयम बिल की होली होने शुरू होने जा रही है। जिनको बिना नमक की कलर की तीर्थ सुषमा साहब साथ होली करनी है वे माया तय उल्का तय के पास अपने नाम लिखा दे। हबो सूचना
2: राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य आनंद सिंह महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन, महाराष्ट्र केसरी उपाध्याय पूज्य प्रवीण सिंह महाराज साहब एवं तीर्थेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन,